0: Vैसे भी पर सी
1: ये तो वैसे ब्राइट नहीं इसको उसको भी चाहिए बाहर पुलिस पुलिस मार्टर इस 24 Mag 22.
0: Mag 22, proceed.
1: 4855 for the fall.
0: Affirmative, apartment B, Bravo.